उत्तम सलोक साध के बचन अमुलीक लाल रतन सुन समाप्त हो तो उधार या त्रै लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग।

अवर काज तेरे किते न काम, मिल साज संत पाज केवल नाम, सरन जाम लाग पवजल तरन के, जन्म वृथा जात रंग माया के रहाओ, जाप तप सन

हमरे दुष्ट सबै तुम कावहु आपादै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेव सिख्य सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैरन कौआ संगरिए पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अवर न त्याहूं जो बरचा हूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारिया है आप हाद है मुझे उबरिए मन काल का त्रास निवरिए हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस्तु जो करियो रचा राख ले मोहे राखन हारे साहिब संसहाय।

एकोविस एक दो जीव लख होए लख होए लख बीस लख लख गेड़ा खिया एक नाम जगदीश इतरा पत पबड़िया चढ़िया होए इक्कीस।

नमो दान दाने नमो मन माने नमो रोग रोगे नमस्तंग स्नानंग नमो मंत्र मंत्रंग नमो जंत्र जंत्रंग नमो इष्ट इष्टे नमो

धली है के सर्वत्र मान्य के सर्वत्र दान्य के सर्वत्र गौण के सर्वत्र पहुण के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र राज के सर्वत्र सहज के सर्वत्र दीन के सर्वत्र लीन के सर्वत्र जाहो के सर्वत्र पाहो के सर्वत्र देश के सर्वत्र पेश के सर्वत्र

कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुभाष है, कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है, कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है।

राम दासे हुई सहाय अर्जुन हर गोविंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डठे सब दुख जाए ते एक बहादुर सिमरै कर नौ निध आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह

भेजो पति जन्म पर म्याता सतगुर सब सुनाया सतगुर जबरदाता को न सब सुनी लोक सभा सतगुर मिले सच पाज ने विचो आप गवाया।

सुनै इहो निदान जपे मन कोए सब जुग में तागिंगत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सरमतात केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन बिसराम कोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाके मस्तक करम प्रपाए साध